0: रखनीश दे पाशाह जी महाराज
1: जी गुरु गरीब निवास अंतर जामी सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी दे पावन स्थान दियां हाजरियां परदे गुरु कीयां संगतां वल्लों गुरबाणी दे शब्द कीर्तन सत्कार करदे होए बेअंत माया अरदास कराई है पातशाह सतगुरु आप नाम जानी जन सतगुरु जी कृपा करनी रहमत बख्शिश करनी दे रुकता दे नाम दी दात बख्शिश करनी सतगुरु जी का

चौ गिरद हमारे राम कार दुख लग न पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई। राम नाम औखद दिया एका लिवलाई।

द्वितीया माल को सक आला पहे संग रागनी पांचौ था पहे गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सीहुति उचारी तनासरी ए पांचौ गाई माल राग को सक संग लाई मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चंड कौशक उभारा खाओ खट आओ पहरा नद गाए अष्टमाल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोला पंचनार संग अष्ट सुत

अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खष्टम मेघ राग वह गावहे पाचौ संग बरंगन लावहे सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावहे आशा गुनगुनी ऊंचा सुर

0: चक्रवर्ती चतर चक्र भगते स्वयं भव सुमंग सर्वदा सब जुगते कपालम प्रणासी दयालम स्वरूपे सदा अंग संगे अपंग विभुते
1: देख ते गुप्त अन सत वेद रंगे अपत नानक गोविंद सिंह श्री अकाल पुरुष सहाय दरबार में तेरे दरबार सत कर्म से निरंकार लक्ष्मी खड़ी तुम्हारे दरबार।

मेरा आकाश निवास सीतांग रज रोज एकादश चंद्र प्रतांग दुत चांद तिनी सा दीप दई जय पावक पौन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाए दिए जय लोक चतुर्दश चार चे गंधर्व देव देव चे अद्भुत अभूत अछूत मतंग अनगाद अभ्याद अनाद गतंग अनखेद अभेद अशेन्द्रंग जय चार चतुर्दश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जय रसोग न भोग न जोग जुगंग वो भंजन गंजन आश्रम ये बंद देव देव निरंग कण किन्नर चच भुजंग रचे मणक माणक मोती लाल सुचे अनभंज प्रभा अनगिज प्रतंग ये पारन पावत पूर पतंग अनखंड प्रसरूप अनदंड प्रभा ये जनपद वेद पुराण सभा ये वेद कतेब अनंत कह ये भूत अभूत न भेद लह ये वेद पुराण कतेब जपा सुध सिंध अधोमुख तावत पाए हे कल्पलो तब

समस्त सिद्ध प्रदता श्री सर्व सत है, अनादनात है, अभंज भंज है सदा, अगंज गंज है श्री सिद्ध प्रदता, अनूप रूप स्वरूप है, अक्षय तेज मानी है, सदैव सिद्ध शुद्धता प्रताप पद जानी है, न राग रंग रूप है, न रुख राग रेख रेख है, अधोग तक तक भूत अभ्रम अभेक है, न तात मात जात है, न पाचे न वर्ण है, अदेक से कभेक है, सदैव विश्व भरण है, विश्वभर विश्वनाथ है, विशेष विश्व भरण है, जिमी जिमान के सदैव कर्म भरम है, अधिवेक है, अभेक है, लेखनाथ जानी है, सदैव सर्व ठोर में विशेखान मानी है, न जंत्र मैं न तंत्र मैंने मंत्र बस आवई, पुरानो कुरान नेत नेत के बतावई, न कर्म मैं न धर्म मैं न ब्रह्म मैं बताइए, अगंज याद देव है कहो सुखै सपाइए, जिमी जमान के बिखे समस्त एक ज्योत है, न घाट है, न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होत है, न हन है, न पन है, समान रूप जानिए, मकीन ओ मकान अप्रमाण तेज मानिए, न देह है, न गेह है, न जात है, न पत है, न मंत्र है, न मित्र है, न तात है, न मत है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साथ है, न दुख है, न दाग है, न द्वेख है, न देह है, न सिंह है, न स्यार है, न राव है, न रंग है, न मान है, न मोत है, न साग है, न संग है, न जच है, न गंधर्व है, न नर है, न नार है, न चोर है, न शाह है, न शाक कुमार है, न नेह है, न गह है, न देह को बनाव है, न छल है, न छिद्र है, न छाल को मिलाव है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है, न राग है।

अगसाद जे बटे तपस्तपी विषय किया बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पे किया अगाद आद देव की नाद बात मानिया जात पात मंत्र मित्र सत्र स्नेह जानिया तभी सरिप को लोक के कृपा

रूप राग न रेख रंग न जन्म मरण भीन आद नाद गात परसुत धर्म कर्म प्रवीण जंत्र मंत्र तद जाको आद ब्रह्म पार हस्त किट बिखे बसे सब ठौर में निर्धार जात पद न ता जाको मंत्र मात न मित्र सब ठौर बिखे रम्य हो जी चक्र चैन छेद न क्षेत्र आदे उदार मूरत अगाध नाथ अनंत आद अंत न जाने अभिखा देव दुरांत देवियों ने जाने ही जय मरम वेद कतेव सन को सन के चंदन पाव ही न सेव जच किन्नर मच्छ मानस मुर्ग रुग उपार नेत्र पुकारे शिव चक्र मुख चार सर्व सर्व तार के तर जापी जय जाप आद अगाध अनाद मूर्त ताप जंत्र मंत्र न वही कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व डोर रहो विराज राज राज प्रवीण जच गंधर्व देव दान ब्रह्म क्षत्रिय माहे वैष्णव के बिखे विराज सुधर भी वह नाहे गुड़ गौर न भील भी कर ब्रह्म से स्वरूप राज भूमकास अनूप जा जन्म न काल कर्म न धर्म कर्म विहीन तीर्थ जात न देव पूजा गोर के ना अधीन सर्व सब तार के तर जानी जय ज्योत शेष नाम संस्पन्न नेत पूर्ण होत सो सुधटे सब सुर विरोध दानो करब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर करब पड़त पड़त के महाकव गड़त गाड़ अनंत हार हार कयो सबु मिल नाम नाम दुरंत भेद भेद न पायो लख्यो न सेवक देव देवदानो मूड मानो जचन जाना जेव भूत भगवान भूपदा नाथ नाथ अगन माय जले थले मंज सर्व ठौर निवास देगे न नेसने अबे नाथ अजीत सर्व गंजन सर्व भंज सर्व ते अनभीत सर्व करता सर्व हरता सर्व दयाल द्वेग चक्र चेन जबरन जागो जात भेग रूप रेख न रंग जाको राग रूप न रंग सर्व नायक सर्व गायक सर्व दे अनभांग सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल दीन बंद आओ समी आद्य पाल दीन बंद पर भी श्री पर सर्व को करतार बरन जन चक्र जाको चक्र जन आकार जात पाद न गोत्र का था रूप रेख न बरन सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भू को बरन दुष्ट कंजन सत्र भंजन परम प्रमाथ दुष्ट हरता सिट करता जगत में जगात भूत भव्य भविक भवान परमान देव गांज मित्र पर दयाल दयाल दीन दयाल मुकंद अगो डंडन दुष्ट खंडन कालू के काल दुष्ट हरणंग पुष्ट करणंग सर्व के प्रतपाल सर्व करता सर्व हरता सर्व के काम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाव सर्व भुक्ता सर्व जुक्ता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व समृद्ध सर्व साधन सर्व के वेद विचार दुष्ट हरता विश्व हरता आद रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आद अखंड भूमिका जले थले मैं जब जाप अखंड सृष्ट चार विचार जते जानिए सब चार आद पासरी पर दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्वमान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोटि उपेंद्र जन्म ज्ञाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावई शिव रुद्र ओ मुख चार कोटिंद्र उपेंद्र व्यास सनक सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण सर चक्र ते भुक चार आदात न मज्जा को भूत भगवान सत्व प्रतिज्ञा कलयुग चतुर काल प्रधान ध्यान ध्यान के महामुन गाय गंधर्व पार हार हार थके सबने पाइये तह पार नारद आदि वेद व्यास मुन महान अनंत ध्यान ध्यान के सब कर कोट कष्ट दुरांत गाय गाय थके गंधर्व

कौन धर्म को क्रम है, को सकल विस्तार दोहरा, कह जी तब का मरण है, कौन स्वर्ग का नरक, को सुगड़ा को मूर्ता, कहा तर्क अतर्क दोहरा, को निंदा जिस है कवन, कवन पाप का धर्म, कवन जो को भोग है, कवन कर्म अपकर्म दोहरा, को सुसुम का शोक है, तम को कहा कहांत, को सूरा दाता कवन, को तांत को मांत दोहरा, कहा रंग राजा कवन, हरक शोक है कवन, को रोगी रागी कवन, को तत्व तन दोहरा, कवन रिष्ट को पुष्ट है, कौन सिष्ट को विचार, कौन सिष्ट को भ्रष्ट है, को सकल विस्तार दोहरा, कहा कर्म कौन कर्म है, कहा परम को नाश, कहा चेतन की चेष्टा, कहा चेत प्रकाश दोहरा, कहा नेम संयम, कहा ज्ञान अज्ञान, को रोगी सोगी कवन, कहा

तो प्रसाद धीरक त्रिवंगी छंद दुर्जन दल दंडन असुर भंडन दुष्ट निकंद नाद बते चित्र असुर मारण पति धारण नरक निवारण गुड़ गते अच्छे खंडे तेज प्रचंडे खंड उतंडे अलख मते जय जय हो सी मैं कासुर मर्दन राम कपर्दन छात्र छिते असुर भंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप अते चंडासुर चंडन मुंड भंडन धुम्र

पवर पवंक भुजा परंक तेज बरंग लगुड़िया फांदे आयुध बांधे संध मर्दन काल सुरंग अष्टाय चमक भूखण दमक अस झमक फोंक परंग जय जय होसी मैं कासुर मर्दन राम कपड़दन दैत जिनांग चंडा सुर चंडन मंड विमुंडन खंड अखंडन खून किते दामन दमकन जा फरंकण फणी फुकरण जोत जिते सरदार बिरखण दुष्ट प्रकरखण पुष्ट प्रहरखण दुष्ट मधे जय जय उसी मैं कासन मर्दन भूम आकाश तल उर्ध अर्धे दाम प्रासन सुछब निवासन सृष्ट प्रकाशन कुंड गते रक्ता सुराचन जुत प्रमाचन हृदय नराचन धर्म प्रते सुनता चिंती अनर विवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय उसी मैं कासन मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अगोग निवारण दुष्ट प्रजारण सृष्ट उबारण सुध मते फणियर फुंकारण बाग बकारण शस्त्र प्राण साधमते सहति स्नान अष्ट प्रवाहन बोल निबाहन तेज तुलांग जय जय उसी मैं कासन बंदन भूम आकाश पताल जिलांग चाचर चमकारन चिच्छुर हारन धुम दुकारन द्रुप मथे दाढ़ी प्रदंते जोग जयंते मनज मथन ते गुड़ कथे करम प्रणासन चंद्र प्रकाशन सूरज पते जन अष्ट भुजे जय जय उसी मैं कासन बंदन भरम विनाशन धन मुदजे घुंगरु घमकण शास्त्र जमकण फणियर फुंकारण धन मुदजे अष्टाड प्रासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाह शुद्ध स्नाहे अगम अथा एक व्रते जय जय उसी मैं कासन मर्दन आद कुमार अगाद व्रते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावर कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आद कथे केंकनि प्रसोहन सुर नर मोहन सिंगारोहण पितर तले जय जय उसी सब ठौर निवासन बाए पता।

सुता समर्पण तर्क वितरकण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय होती छत्रखण आद अनिल अगाध भे चंचला चखांगी अलग पुजांगी तंत्र।

दामने प्रकाशे उन्तन नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानी प्रकरण सर्वर रखण पदुष्ट प्रकरण पितर तले अष्टायुध बाण बोल बाण संत प्राण गुड़गते जय जय उसी में का सर मर्दन आज अनाद अगाध प्रते दुख दुख प्रबचन सेवक रक्षण संत प्रदक्षण सुतरे सारंग स्नाहे अदुष्ट प्रदाहे अर्धर गाहे दुखरे।

ऊंच नीच कीनो बनाओ, सब वार पार जागो प्रभाओ, सब जीव जन जानत जाहे, मन मूड़ क्यों ना सेवत ताहे, कई मूड़ पूड़ पत्रा पत्र पूजा करंत, कई सिद्ध साध सुज सिवंत, कई पलट सूरज सीधा कराए, प्रभ एक रूप द्वय कह लखाए, अणछी तेज अनवय प्रकाश, दाता द्वंद द्वय अनाश, सब रोग शोक ते रत रूप, अनवय काल अच्छा स्वरूप, करुणा निधान कामल कृपाल, दुख दोकर हरत दाता दयाल, अंजन भीन अनभंजनाद, जल तल प्रभाव सर्वत्र साद, ये जात पात ने भेद भ्रम, ये रंग रूप ने एक धर्म, ये सत्र मित्र तो एक सार, अच्छा स्वरूप अभिक अभिचल पार, जाने न जाए रूप रेख, है बास तास कह कौन भेग, है नाम तास है कवन जात, ये सत्र मित्र नहीं पुत्र भ्राद, करुणा निधान करण स्वरूप, ये चक्र चैन रंग रूप, ये खेत भेद ने कर्म काल, सब जीव जंत की करत पाल, उर्धंग विराट सिद्धंग स्वरूप, बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप, ये रूप रेख ने रंग राग, अणछी तेज जान भिजदा दाग, जल तल महीप पंतन दुरंत, ये नेत नेत निसिन उचरांत, पायो न जाय जय पैर पार, दिनान दुख दहता।

पच पशु नग नाग नाधप सर्व सम सबको व्रत पारा भूगत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म बिचारा दीन दयाल दयानित दुखन दिखत है पर दे तनहारा दाहत है दुख दुखन को दल दुजन के पल मदल डारा खंड खंड प्रचंड पहारन पूरन प्रेम की प्रीत समारा पारन पास के पद मा पद भेद कते अभेद उचारा रोजी राज बुलो कते राज करो खरुहान की रोजी न टारा कीट पतंग कुरंग भुजंग मूत भविक भवान बनाए देव देव खपे अहं मेव न भेव लख्यो ब्रह्म सिंह भरमाए वेद पुराण कते कुरान हसे थके कर हाथ आए पूरन प्रेम प्रभाव बिना पद स्यों किन श्री पद मा पत पाए अद अनंत अगाध अद्वैक सुभूत भविक भवान अभान अंत भीन अनात्म आप अदाग अदोग अछिद्र अच्छा है लोगन के करता हरता जल में थल में भरता प्रभ वह दीन दयाल दया कर श्रीपत सुंदर श्री पद्मापत है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय देह विहीन सने सबोतन ने विरक्त अगे अच्छा जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दह काहे को डोलत है तुम्हारी सुध।

लावत खाओ तू तन एक न लगन पावा राखत है अपनो कर जकर पाप समूह न बेटना पावा और की बात का कह तो सस पेट ही के पट पीछे बचावा जज बुजंग सुदानव देव भेद में सभी कर जावा उमे का अस्पताल छात्र जज बुजंग सब सरनावा।

से जदुरान से रुमनारिक से सब मिल गयो बेदक ते बिन भेद लखियो से बाहर परे हरि हाथ न आयो पाए सके नहीं पार मापत सिद्ध सनाद सनातन जायो धन दरो तह को मन में जय को मितो जिस वह जग छायो वेद पुराण कते कुरान भय निरपान सब पचहारे वेद न पाए सके न वेद को खेद तहन छेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे आद नाद गाद अद्वेक अद्वैक जिप्योतन ही कुल तारे तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत तारे देश प्रयोग कर बेस तपोधन किस तरे न मिले हारे प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे वो न्यास करे मुख कारे दीन दयाल अकाल भजे बिना अंत का अंत के धाम सिधारे तो प्रसाद कवित अतर के चलिया।

जोत के जतैया बिरध के मटैया, माँ बुद्ध के दवैया माँ मान हो के मान है, ज्ञान हो के ज्ञाता माँ बुद्धता के दाता देव, काल हो के काल माँ काल हो के काल है, पुर बिना पार पवे हिंगला हिमालय झावे, गुर गर तेज गुण गावे तेरे नाम है, योग योग साधा पवन साधना की तेग बांधा, अरब के अरबी अराधे तेरे नाम है, फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरे सी जान है, पश्चिम के पश्चिमी पछाने जी काम है, मरहटा मंगेले तेरी मानस तपस्या कर, जड़वे तिलंगी पहचान धर्म धाम है, बांग के बंगाली फिर हांग के फिरंगा वाली, दिल्ली के दिल वाली तेरी आगे मैं चलत है, रोह के रोहेले मांग देश के मंगेले बीर, बांग सी बुंदेले पाप पंज को मलत है, गुखा गुन गावे चीन मचीन के शीस नहीं आवे, तिब्बती दिया दुख दे।

देव देवतान को सुरेश दान वान को महेश गंग धान को अभेश कहीं आते हैं। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और कहो पहना दीन साथ अधीन कहीं आते हैं। पाइये न पार तेज पुंज में पार सर्व विद्या के उदार है।

तार निराधार है न परवार पाइये न पार पे पार के बखानिया है अदव अपनासी परम पूर्ण प्रकाशी मां रूपों के राशि अनासिका के मानिया है जंत रहू न जा जकी मां पू न माय तकी पूर्ण प्रभा की सुछटा के अनमानिया है तेज को तंत्र के राज को जंत्र है के मोहन को मंत्र है निजंत्र कह के जानिया है तेज को तरह के राज को सर है के सुरता को घर है के सीता की सार है कामना की खाने के साधन की सान है वृद्धा की बान है के शुद्ध बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप को हु को रूप है कुमत को प्रकार है धीरन को दत्ता है गनीमन को गारक है साधन को रचक है कुनन को प्रहार है सिद्ध को स्वरूप के बुद्ध को विभूत के स्कृत को अभूत के अच्छे विनाशी है काम को कुरिंदा है के खुबी को दिहंदा है गनीमन करिंदा के है के तेज को प्रकाशी है कालों के काल के शरण के साल है के मित्रन को पोकत है के बुद्धता की बासी है जोगों को यंत्र है के तेज को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सीता को वास है के बुद्ध को घर है देवन को देव है के निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के सुरता को सर है जान को बचैया है ईमान को दिवैया है जम जारत को कटैया है कि कामना को करे है तेज को प्रचंड है अखंड को खंड है महिपर को मंड है के स्त्री है ना नर है विश्व को भरण है के अवता को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है पाइये ने पार परामारु को पार जागो खींचे विचार सो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय गावे हबसी हल भी जावे पूरी भी न पार पावे आशा तो अनाश है देवन को देव महादेव को देव है निरंजन अभेव नाथ तत्व विनाशी है अंजन बीन है निरंजन पर बीन है के सेवक अधीन है कटैया जाम जाल के देवन के देव महादेव।

न कामना के कर है के बुद्धा को हर है के सीता के साथी है के कान है गुचाल के चीर कैसी छिरावर छाज कैसी छप छतरानेर छपा कर कैसी छप कलिंद्र के कूल के हांसरी सियारू मीरा सी हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरा सी सुरंगाबाद निके रही झूल के चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ काशीपुर सीसा सी सुरंगाबाद निके सोहियत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हलबानेर हांस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रागिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंगधार बकांसी बिलंदाबाद कीरत तिहारी की उजारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी इसके दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाइयत है भकरी कंधारी गुर गखरी गर्द जाचारी पौन के हारी तेरो नाम ध्याईयत है पूर्व पलाऊ का

बोल अच्छा स्वरूप अव्यक्त नाथ आजान बाहु सर्वा प्रमाद जत महीप बंतन प्रफुल्ल शोभा बसंत जत पड़ोल बंतन दुरांत खग मृग महान जत प्रफुल्ल सुंदर सुजान।

अंबर जमीन जह जपत जाप, सातो आकाश सातो पतार, बितरयो अदृष्ट जह कर्म जार, सातो आकाश सातो पतार, बितरयो अदृष्ट जह कर्म जार, उस्तत

चौथा सो पुरख एक ओंकार सदगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब ध्यावह सब ध्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर ध्याव

माहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनू तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए तू कर कर वे

बिनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तव चरनन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब है तुम घावो आप हाथ दै मोहे बचावो।

आज संघरिये पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं, जो भर चाऊं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय, चुन चुन सत्र हमारे मारिय। आप हाथ दे मुझे उबरिये, मरण काल का त्रास नवरिये। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री असधुज जूं करियह रच्छा। राख ले हो मुहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता।

वेद राज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो।

काहूं सिमट भयो शंकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आज जुगाद स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत तुत पाता, सकल मलेच करो रण घाता, जे इस दुजता शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत होए मरे, पुरख जावन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार धिए हैं, ताके काल निकट नह हैं, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्टन जाए निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो, रिद्ध सिद्ध घर मो सब होई,

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भक्त नेत सुर्ग बास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत किए फल होई आद ब्याह छुए सकै न कोई सम सतरै सै

हमच आया हमच गया हमच में हमच में हमसता हमच लाया हमच कटया हमच गया हमच चार पुणा हमच पापन विचार हमच नरस कौता हमच से हमच रोए हमच परिये हमच तवे हमच जाते जिंस तवे हमच मूर्ख हमच सियाणा मत भक्ति सार न जाना हमच माया हमच छाया हमें करकर जंत पाया।